0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
0: ओहो
3: दोनों डील करा से
1: टाइट वेरी टाइट।